0: Bollywood.
1: दिल में जुनू है, जोश भी जवां है, सांसों में मेरे जलती ये शमा है.
0: Dan banyak lagi, dengarkan kami di Asyik FM. Moi, Moi, lain dari pagi yang lain.